करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी करूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे, मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker.

0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: अब रंग हेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेट नला विश्वासी समक बसुगो जु रंगे तयारी लाबा दुई हिन्दा जयमसी तथा लासो नमस्कार स्पार्क माई फेट अर्थात नला विश्वासी समक बसुगो अंक बाह्र रे रंगिता स्वागत मुला नाबियोग तामाङ तिगा रंग रंगला बेनान तिंसे परमेश्वर सेवा लावरी आवश्यक त्याग कादे लादोला इच्छारी गम्भीर मुसुला मती 11 अध्यायला 16 दिन 21 दन्देला निगदे दा नै खरंग लसी गोन लसे थे निगदे मी ग्यामरी क्यार क्लाङबा कोला गदे रंगमन हिन्ना थे निगदे से रंगला रोगदे दा न्योइसी चुरंग बिमुला खोराजिन देन बेसेदा मिगदे एनी गदे से परमेश्वर ग्याम सजय यांगला टिग्द विषम एनी गदेला नामसरी लब रंगबा उदेगला गे गदे टुरोस देन सिडोन सहरी लबै हिंसम ओनमान थेने गदे से बोरा खोन्सी नेब्रा फोर्सी रंग रंगला पाप थासी परमेश्वरपट्टि दोसेला मुला परमेश्वर देन रंगला लुई लागिरी याकरकी अद्भुत देन लानन रोमाञ्चक योजना मुला तिगा रंग रोसे रंगला तिगा लाबरी पंक्षु मुला खेला लागि रंग तयार लावन मुसुला तिगा रंग

0: ख्रिस्ट बारेरी तयार मुसुला ङा चुरी मुला ङादा पुइसुगो रङ ङादा हानङ लसुला ङा थेरी निला थेन दे तिग रङ देन आवश्यक विश्वास मुला कि परमेश्वर से रङला लुइरी रङला आत्मिक लक्षा गति पुरा लाभरी बेनन ताम पिन्सुला यदि थेरङ हिन्बा विषम परमेश्वर से रङला लुइला लागरी परमेश्वर से बोलवाट पुरा लाभरी रङ तयार लसुला विवा ताम्री रङ तयार मुसुला मर्कुस एक अध्यायला 35 स्योरेन निम रङ भन्दा नत्सन येसु सोन्जी सुनसान ग्लारी प्रार्थना लाभरी फेजी यङला तयारीला बेनन भन्दा महत्वपूर्ण बो प्रार्थना हिन्बा यङसे येसु देन मिला सम्बन्ध थानबरी एकान्त दुई फ्लागसे छनोट लादोला देन चु एकान्त दुईरी येसुसे याङला आत्मज्ञान याङदा प्रकट लाभरी ग्लगाप ताबा नेसन कादे ज्ञानवा ला लागिरी दुई तेला समावेश मुला हितोपदेश 24 अध्यायला 27 फिर्क्याप ला गे जिन्ना लाउ थेन दे रङला खेतरी तयार लाउ थेन दे रङला तिम सो परमेश्वर से रङदा परमेश्वर से पिन्सु बगेन बोलोवार ला लागिरी तयार लाभरी सेमलासु मुला उत्पत्ति ला पुस्तक रित चु तयारी ला अवस्था 13-14 वर्ष दोन जारी ताजी नाच थे मिश्र लुरी दास ताजी थेलिछ थेदा जेली बजी थेरङमा वर्षा गदे यसेबदा परमेश्वर श्री मिश्रला दोस्रो बेनन भन्दा महत्वपूर्ण मिला रूपी उच्च लसुबारे तयार लाभरी आवश्यक मुला यदि चुसे छोन रूपी तयार अरे मुला विषम थेगेन नेतृत्व देन झिमियारुला पद्री थानमा हावा प्रसिद्ध आत्मिक रूपी सम्हाम लाबारी हामला तासेला आरे मुबा परमेश्वर से मछ थेदा याकर्गी नम्र मी सोमुजी सोसुजी जोसी महसुस लजिकी परमेश्वर से थेदा लाबरी सेम्बाला बलवाट पुरा लाबरी थे रङलान भन्दा परमेश्वरला शक्ति दि पिनबा आवश्यक मुबा एक कोरन्थी 9 अध्यायला 25 तिगै खेलरी भो किन्बा मिसे जम्मन थरीला तालिम किन्दोला थेनिगदेशी म्लासी मिबा इनाम याङबाला लागिरी थेरङ लामुला तर याङसिचा खाइमै आहाम इनाम याङबाला लागिरी थेरङ लबामुला तयारी हाइमा दमन सजिलो आतामुला प्रतिस्पर्धा गम्भीरतासे किन्बा देन पौडेल डासेला चाहना थान्बा खेलाडीसे योनन रेसी तालिम किन्बा ता लामुला यदि रङसे पुराण तिङसेल परमेश्वरलाई सेवा लाभा संकल्प लस्युबा मुला देन दत्ते संघर्ष देन अनुभव लस्युबा मुला विषम धैर्य लस्युगो दत्ते रङसे भोक्तिबा निगदी याकर्खी दे गेन उद्देश्यला लागिरी हिन्बा आमेन रङनेजे परमेश्वरलाई वचन ज्ञान आशिष याङै आमेन प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेट कार्यक्रमलाई बारेरी रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661946 रि सम्पर्क लस्युगो हस्त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
1: Time check. It's 7 PM.
2: अहिले साँझको 7 बजेको छ।